फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है तेरा हो जाऊं. गुड मॉर्निंग साउथ अफ्रीका, वेलकम टू स्माइल इन द सिटी राइट हियर ऑन लोटस एफएम. आई एम कृष्णा प्रियदास एंड इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग. आई मस्ट से इट्स वेरी कोल्ड, इट इज एक्चुअली क्वाइट कोल्ड, क्लाउडी इन डर्बन. वेल इट्स जस्ट वंडरफुल टू हैव यू कम.